पाठ पढ़ियो और वेद विचार्यो निवल भ्यंगम साधे पंच जना स्यों संग ना छुटक्यो अधिक अहं बुद्ध बांधे। प्यारे इन मिद मिलन न जाई मैं किए कर्म अनेका हार परयो स्वामी के द्वारे दीजै बुद्ध बबेक। जो सतगुरु की शरण च आप आने इतने सानू बबेक बुद्ध मिलती है क्योंकि ये वो बबेक बुद्ध वालिया के वचन ने। बबेक बुद्ध पता कदों होंदी साडी जिन्हों गुरमत कहिंदे आ। पंजे शब्द वजे मत गुरमत जो अकाल पुरख नाल साडी सुरजी टुटी गंढी जांदी है उदों जाके बबेक बुद्ध होंदी। ते गुरबाणी सारी ही बबेक बुद्ध वालियां दी है। सारियां ने वाहिगुरु दे नाल पहला मिलाप किया गुरमंत्र की कमाई करके मन नूं निर्मल किया। गुरमंत्र भावें गोबिंद गोबिंद गोबिंद जपया चाहे राम राम कबीर मन निर्मल पिया जैसा गंगा नीर पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर। गोबिंद गोबिंद गोबिंद संग नाम दियो मन लीण जिदा तुसी लीण कर रहे हो वाहिगुरु दे नाल। कबीर साहब देखो जिन्होंने लीन किया उन्होंने उदाहरण पंजे पातशाह ने दी भगत उस रस्ते से फिर सानू तुरन लिए कह रहे हैं कहते तुम भी जिन्ना चेर बबेक बुद्ध के धारनी नहीं होंगे पंजा के नालों संग नहीं जी छुटना क्योंकि खेल वाहगुरु ने आप बनाया माया का। तो माया के पंज पुत ने पंच पूत जने एक माई माया आवन जान के खेल बनाया आग्ञाकारी कि माया इन्हों का काम ही पंजा का वा इन्हों तुहानू फुरने देने है फुरने ते आपां हुण इन्हों का संघ छड़ देना। उन्होंने लिखा पंच जना से संघ ना छुट गयो ते अखीर ते फिर दस्या ना आ जिहड़ा तुसीं कर रहे हो कहिंदे इदां करन लग पए ते संघ छुट जाणा। संघ छुटण का मतलब हुंदा वा तुहानूं विचार नहीं कोई आउणा भैड़ा फुरना नहीं आउणा कोई भी इह की करदे ने काम फुरने देंदा भी माड़ा वेख माड़ा सुन माड़ा बोल ते क्रोध ते हर गल च प्रधान रहिंदा पंजां दे अगे क्रोध ही प्रधान है। क्रोध प्रधान महा बड दुंदर दुंदर ना बड़ा खतरनाक जिहा जिहनूं वेखण नूं ना दिल करे। तुसीं क्रोधी होए बंदे दा मूंह वेखियो कदी जिहनूं क्रोध चढ़दा उहदी शकल विगड़ जांदी है। ये की करता साड़ी शक्ल बिगड़ा देंदा बिगाड़ देंदा क्रोध ता इन दुंदर क्या भयानक ये प्रधान है सारे का। जे हौमे ते सट मारती किसी ने तो क्रोध आना जे कामना पूरा होया क्रोध आना जे लोभ साडा ना होया पूरा तो क्रोध आना। इसलिए सानू ये सारे ही फुरने देंदे ने विकारां च पाउंदे ने। पंच दूत चितवें विकारा माया मोह का ये पसारा ये पसारा पसार छड़ दे साडे अंदर मन साडा की है मन असी की है जी मन मन दे विच इन्ने फुरने भर छड़ दे ने नू इन्ना मैला कीता इन्होंने ते है खेल उन्हें आप ही बनाया ते सानू फिर गुरमत जीवन जांच आ गई जदों गुरु की शरण च आए उन्होंने की अरदास आपां कीती आ जिहड़ी तुसीं कर रहे हो वाह गुरु। ये अरदास पता की है ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन ऐसो गुण की अरदास कर रहे हो ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन की कर पंच दोख और अहं रोग ये तनते सगल दूर की। हुण दूर करन दा मतलब है तुहानू कोई जो मर्जी कही जावे फरीदा जोतै मारन मुकियां तिन्हां ना मारे घुम आपनड़े कर जाइए पैर तिन्हां दे। ऐस अवस्था दे विच मन फिर आ जांदा उदों समझो कि ये वस हो गए। है तो औखा काम है महाबली ने पंजे पर गुरु अर्जन देव जी ने बधे पंजे बधे महाबली कर सचा ढोआ आ जरा बोल दे वाह गुरु ढोआ दा जहाज वाहगुरु नाम।

मोहरा जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ त्या है संत अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा।

गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु

गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह

गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु।

अंध गुबारा हरका नाम संग उजियारा जहां पंथ तेरा को ना सिंह हरका नाम तैनाल पछानू।

अमृत बरखा भक्त जना की बर्तन नाम संत जना के मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर के नाम द्रे जन कोट।

मिथ्यारथस्ति आशु वस्त्रा मिथ्यारंग संग माया भे घस्ता मिथ्यात्रो मो अभिमान मिथ्याप सुपरगर्त गुमान अस्थिर भगत साधु की शरणानक जब जब जीव हर के चरण मिथ्या सर्वन पर निंदा सुनह मिथ्या हस्त पर दर्प को हिरे मिथ्या नेत्र बेख

तथा अष्टपदी साधक संग मुखोजल होत साध संग माल सगरी खोत साधक संग मिटे अभिमान साधक संग प्रकट सुखियान साधक संग बुझे ब्रह्म नेरा साध संग सबोतन मेरा साधक संग पाय नाम रतन साधक संग एक पर जतन साध की महिमा बरने कौन बरानी नानक साध की शोभा पर माहे समानी साधक संग गोचर मिलाय साधक संग सदा पर भुलाय साधक संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग वे सबकी रेन साधक संग मनोहर बैन साधक संग न कतुहता वै साध संग अस्तित मन पावै साधक संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभु सुप्रसन्न साध संग दुश्मन समेत साधु कै संग महापनीत साध संग किस्य नहीं बैर साधक संग न भिंगा पैर साधक संग ना ही गो मंदा साध संग जाने परमानंदा साधक संग ना ही गो ताप साधक संग तजे सबे आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बन आई साधक संग ना गबुहुंता वै साधक संग सदा सुख भावे साध संग बस अगोचर लहाय साधु कै संग आ जार सहाय साधक संग बसे थान उछय साधु कै संग बहल पहुँचय साधक संग दृढ़ सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाय नाम निधान नानक साधु कै गुरबान साधक संग सब कुल उदार है साध संग साजन मीत कुटम निस्तार है

साधु के संग पाप लायन सा संग अमृत गुण गायन साधक संग सर्वधान गम नानक साधक संग सफल जनम साधक संग नहीं कशकाल दर्शन भेट तो होत निहार साधक संग कलुक धर साधक संग नरक पर हर साधक संग इहा उहा सुवेला साध संग बिचरत रेला जो अच्छा सोई फल पावे साधक संग न बिरथा जावे पार ब्रह्म साधरत बस नान गुदर साध सुंदर सह साधक संग सुनो हर डाओ साध संग हर के गुण गाओ साधक संग न मनते बिसराय साध संग सरवर निस्तराय साधक संग लगे ब्रह्म मीठा साधु कह संग घटगा डीठा साध संग भया गया कारी साध संगत भई हमारी साधक संग मिटे सब रोग नानक साध बैठे संजोग।

ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जलमय कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व को सोख ब्रह्म ज्ञानी का दृश्यमान जैसे राजरंग को लागे तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी का तीर्ज एक जो वसुदा गौ खोदे कौ चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाव नानक जो पाव का सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैला लागे जला ब्रह्म ज्ञानी कह मानो है प्रकाश जैसे तर ब्रह आकाश ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सतर समान ब्रह्म ज्ञानी कह नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा मन अपने सप्ते निच्छा ब्रह्म ज्ञानी से जन भय जिन नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब पर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कश बुरा ना पाया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक उपर्यास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाह ब्रह्म ज्ञानी का नाही तंधा ब्रह्म ज्ञान ले तावत बंधा ब्रह्म ज्ञानी का हुए सोफला ब्रह्म ज्ञानी सफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जब सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग ब्रह्म ज्ञानी का बस ब्रह्म संग ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी का राम प्रवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी का मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश

ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्मज्ञानी सद जीव है नहीं मरता ब्रह्मज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता ब्रह्मज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्मज्ञानी का सब पर हाथ ब्रह्मज्ञानी का सगले आकार ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार ब्रह्मज्ञानी की शोभा ब्रह्मज्ञानी बनी नानक ब्रह्मज्ञानी सर्व का धनी सलोक उर ताराय जवंतर नाम सरम पिख भगवान निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार नानक वा परस सगल निस्तार अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श पार्थ रूप न पेखा नेत्र साध की टहल संसंग हेत करना सुने काहू की निंदा सबते जाने आप इसको मंदा गुर प्रसाद विख्या पर हर मन की वासना मन ते टरा इंद्री जित पंच दोखते रहत नान कोट बधे को ऐसा अपरस वैष्णो सो जिस ऊपर सुप्रसन्न मिशन की माया ते हुए भिन्न कर्म कर तो बहने कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म का फल की इच्छा नहीं बाछ है केवल भगत कीर्तन संग रक्ष है मंत्र अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरे नाम जपावे नानक वैष्णो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग मंत्र बिनसे सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवे तुस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल कर नित नीत मंत्र अर्प बिशन प्रीत अरके चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है राम नाम आत्म में शुद्ध है राम नाम सार रस पीवा उस पंडित काय उपदेह जग

तेरी बाणी घटघट सुनी श्रवण बखियाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जप नानक मन प्रीत सलोक संत सरण जो जन पर सो जन उदरणहार संत की निंदा नानका बहर बहर अवतार अष्टपदी संत के दुख ने आरजा घटे संत के दुख ने जमते नहीं छुटे संत के दुख ने सुख सब जाए संत के दुख नरक में पाए संत के दुखन मत होए मलीन संत के दुखन शोभा तेहीन संत के हथे को रखे ना गोए संत के दुखन थान प्रष्ट होए संत कृपा ने कृपा जे करे

जिस को और ब्रह्म मानुचत आवे सो संसुला नहीं डुलावा जिस पर बना कृपा करा सो सेवा को किस तरह डराए जैसा सा तैसा दृष्टा अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोद सीजिया गुर प्रसाद सब जिया जब देखो तब सब किश मूल नानक सो सूखम सोई स्थूल न किश जन्मे न किश मराय अपन चलते आप ही करे आमन जामन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी थारी सब सृष्टि आपे आप सकल में आप अनक जुगत राज थाप थाप अविनाशी नाई कृष्ण खंड धारण धार्यो ब्रह्मंड अलख अभे पुरख प्रताप आप जपाए था नानक जाप जिन प्रभु जाता सो शोभा मन सकल संसार उदरे तन मंत प्रभु के सेवक सकल उदार प्रभु के सेवक दुख बिसारन आपे मेल लय कृपाल गुर का शब जाप निहाल उनकी सेवा सोई लागे सुनु कृपा करे बड़ भाग नाम जपत पामे विश्राम नानक तिन पुरख को उत्तम करमान जोगिश कर सो प्रभ गह रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुभाय हो वह सो होए करने हाल पछाण सोहे प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना स्ते बजे समाहे समाये ओए सुख निदान उनहु बन आए आपस को आप दिनो मान नानक प्रभ जन एक हो जान सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जानन हार जाके सिमरन उदरिया नानक तिस बलिहार अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया पे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तसे बिरथा गोई राहे रे मन मेरे सदा हर जाप बिनासी बृप आपे आप अपन किया कशु न होए जैसो प्राणी लोचा गोहे तस्मिन नाही तेरा किश काम गत नानक जब एक हर नाम रूबंतोय नाही मोहे प्रभु की जोत सगल घट सुहाय तरमंतोय गागो गर्भ जा सब कि तस्का दिया दरभ सूरा जय कहू कहावे प्रभु की कला बिना कहता वै

द्रव्यारूप रंग पय प्रकाश साधक संग रचर चरा बनी गलधारियन कबार नानक बलिहारी सलोक साधना चाल बिन भजन विखिया सगरी शार हर हर नाम कमावना नानक धन सार अष्टपति संजना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार उर अवर पाप समीत बिसारो चरण कमल हृदय में उतारो करण गान सो प्रभ सम्राट दृढ़ कर गह हो नाम अलवत ए तन संचो भगवान संजना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार गुण उड़ता वे सो तन हर सेवा ते पामे।

जाय नान विजा भावे तलय समाय इसवे सो नाही बुरा बुराय कह हो गने कुछ कर आ भला कर तू तत नहीं किया पे जाने अपने जी की आप साज धारी सब साज ओत बोत अपन संगरा ताकि गदबिंद कही ना जाए दूसरे ता सूझी पाए तिसका किया सब प्रमाण गुर प्रसाद नान के हो जान जो जाने तो सदा सुख हुए आप मिलाए लय प्रभ सुए ओ तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिरदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत।

जी का ए आधार उत्तम सलोक साधगे बचन अमलीक लाल ए रतन सुनत कमावत होत उदार आवतरे लोके निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जागे मन लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाद वाजे सुन सुन अंत करे प्रभु गाजे प्रगटे गोपाल महंत के माथे नानक उतरे तन कै साथे।

रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभधारी नानक निभी खे महमारी प्रभु की सत करो संत मीन सावधान एकागर जीत सुखमनी सहज गोबिंद गुरु नाम जिस मन बसे सोत निदान सर्विच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए

सते संबंध। ऐसा नाम निरंजन होए देखो मन जाने मन कोए, मन न पावे मुख द्वार, मन न परवार साधार, मन तरे तरे गुरसिख, मन नानक पावे न पेख। ऐसा नाम निरंजन होए देखो मन जाने मन कोए,

धर्म खंड काय हो धर्म ज्ञान खंड काय आखो कर्म केते पवन पाणी वैसंतर केते कान महेश केते ब्रह्म काढ़त कड़ी है रूप रंग के वेश केत्या करम भूमि मेर केते केते तूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश

सदोपराधि समस्तु सत्तांग तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं पीते हैं प्रभु हैं जू हैं देश हैं पिस हैं भुजंग प्रिया।

चतुर्चक्र पास है, चतुर्चक्र वास है, चतुर्चक्र मानी है, चतुर्चक्र दानी है। चाचरी संत न सत्र न मित्र न परम न पितर न कर्म न काय जन्म गा जाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिष्ठे आदिश्य अदृश्य कृष्य भगवती छंद प्रथा कथते के अछुज देश के अभिज पेश के अगंध कर्म है के अपंध परम है के अभिज लोक के।

सर्वा करता है कर्ता कराता है, अकलं करता है सर्वा करता है कर्ता कराता हर परमात्मा सर्वात्मा आत्मवास्त जस के जस।

संघ शांत रूपे नमो परम तंदगा तंतक रूपे नमो जो जोगे नमो ज्ञान ज्ञान नमो मंत्र मंत्र नमो ध्यान ध्यान नमो जो जुदे नमो ज्ञान ज्ञान नमो।

अंगे स्वरूप अनंगे अनामत्र पंगे त्रिकालय अनंगे अकामे कचरे छंद अजय अलय अभय अभय अपो अजो अनास काश गंज भंज लख पख काल दयाल लेख भेख नाम काम घाटा नाथ ब्रह्मथ अजो नियमोनि नरागे नरंगे नरूपे नरेखे कर्मग परभंग गंजे लेखे भुजंग प्रिया छंद नमस्त प्रणाम समस्त प्रणास गंजल नाम समस्त निवास निकाम बबुद्ध समस्त स्वरूपे कुकर्म प्रणास धर्म बबुद्ध सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करिमल करिंदा समस्त निवासी अदाय बबुद्ध गदाय गणि में हरियं करियं करिमल रहीम चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते

जत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसति अजराज अजारे भूत पिख भवान के पुपत कौन गने ने जात बिचारे श्री पर श्री भगवान पर जय बनंद कुंद के धाम सुधारे तीर्थ नाम दया दंदाम सुसंध्यम ने मन एक।

पारा हमरे दुर्सभे तुम का आपा दे मोहे बचावे सुख बसे मोर परिवार से विशेष सभे करता रा मोर चाने कर दया करिय सब बहन को आज सुंगरही है पूर्ण हो हमारी आशा दुर्भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ को अपना त्याऊं जो बरचाओ सो तुम ते पाऊं से वैसे का हमारे तारिया चुन चुन सतरा हमारे मारिया आपा दे मुझे अबरिया मरण काल का त्रास निवरिया हु जो सदा हमारे पच्छा श्रिय जो जो करियो रचा राख ले मोह राखना अरे साहेब संत साहेब प्यारे दीन बंदुष्टन के हंता तुम्हो पुरे चतरदस कंता काल पाए ब्रह्मा अवतारा काल पाए शिव जी अवतारा काल पाए कर विष्णु प्रकाश था सगल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सब की हो भेद राय ब्रह्मा ज्योति हो जवन काल सब लोग सुवारा नमस्कार है ताय हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव ध्यान जय छन बदा जो आदन ते के अवतारा सोय गुरु समझो हमारा नमस्कार ते सिखो हमारे सुल पर दाज ने आप सुवारी सेवकन को सावकन सुख दियो सदरन को परम अमृत कियो कट कट के अंदर की जान पर भरे की पीर बचाना चीटी ते कुंचरे सोला सा पर कृपा दुष कर भूला संतन उपाय ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी के की पीर बचाना कट कट के पट पट के जाना जब जो कर करा कर तारा पर जात्र तब दे अपारा जब आकर कर तो कमो तुम मैं मिलते दे तर सब हूँ

हनुमान तुम्हारा हमूढ़ कुछ भेद न जा तुम्हारा देव को कह सुधा सिंह निरंकार कह चिंतन पे वह आप अपनी बोध्या देती बरन भिन्न भिन्न तो देती तुमरा लखन दाय पुथारा कह सुधा प्रथम संस

ठा शीघ्री सिद्ध खाय चंबवा जगा श्रु श्री अम्बावर अच्छा मेरी तुम करो सिख बारह सुख संग्रह दुष्ट जित उठो तो पाता सुग्र मिले करो रण काता जय तो तब सरणी पर तन कह दुर्दुग्ध मरा पुरख जवन पग पर त्यारे तन कह तुम संकट सब डारे जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निक न आए हैं रक्षा हुए ताए सब काला दुष्ट अरुष्ट रंत काला कृपा दृतन जाय न हरो ताके ताप तन कमय हरो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब हुई दुष्ट छा छवा सके ना कोई

सहाय। दुष्ट रोग ते लेहो बचाई, कृपा करे हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सबराता, केल सकल देखो हरता, दुर्दोकन कोचा करता, श्रेय तो जा

कहनानु सुनह संत सब तरपयारो सचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच सब कर सुभाग कर सुभाग शब्द वाजे कला जित कर तारिया

साहिब जी महाराज अमृतमयी बख्शिश सोरठ राग राही करदे ने पंच पदा पंज पौड़ियां वाला शब्द उचारण करके एक पदा दो पदे ते पदे चौ पदे पंच पदा इदा यह शब्द आउंदे आ जिथे तत्ते सिहारी पप्पा ते दद्दे लावा लिखिया होवे तिपदे जां दद्दे औंकड़ दो पप्पा दद्दे लावा दुपदे इदा उचार नहीं करना दो पदे दो पौड़ियां वाला शब्द ते पदे तीन पौड़ियां वाला शब्द चौ पदे चार पौड़ियां वाला शब्द पंच पदा पंज पदियां वाला पंज पौड़ियां वाला शब्द भाव हुंदा।

आई। महाराज जी कहते गुरमुखो महाराज जी दे कोलों ये दात मंगया करवा के, महाराज जी मैनू भी अपने नाम की वड्याई दे दो, मेरे अंदर भी थोड़ा नाम चल पवे, थोड़ा सतगुरु साहब जी कीर्तन चल पवे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। साध संगत जी जिहड़े 36-36 घंटे कीर्तन करते सी ना गुरमुख, माफ करना वो करते नहीं सी, उन्हां दा चलदा सी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। जिन्हां दे चलदा उन्हां नूं फिर शरीर का बोध नहीं रहिंदा, उन्हां नूं फिर यह भी नहीं हुंदा भी नाल एक जना बैठा, नाल दो जने बैठे ने जां 50 जने बैठे ने, क्योंकि जिहदे अंदरों चल रहा है वो कर तां नहीं रहा लेकिन चल रहा है। ते वो फिर देश काल शरीर दी सोझी तो परे हो जांदे है। ऐसी दात है कीर्तन, बड़े गुरमुखां च सी यह दात, हुण भी है जिन्हां ते महाराज जी की कृपा है, जिहड़े महाराज जी के प्रेम च भिजे रहिंदे है, द्वैष नहीं किसी तरह की मन च रखते अपने। महाराज जी कहते, महाराज जी कहते तुसी भी मंग लो भाई, जिन्ना द्वैष मन च रखते हो उन्नियां अरदासां ही कर लिया करो कि महाराज मैनू भी इहो जिहा कीर्तन बख्श दिओ, मेरे ते भी इहो जी कृपा कर दिओ। आ गुरमुख जिवें इन्हां दे चलदा है महाराज साडे भी चल जाए, महाराज असी भी आप जी की सदा सरनाई च रहीए, साडा भी अंदरला प्रकाशित हो जाए, चानना हो जाए साडे अंदर भी। महाराज जी कहिंदे सच्चे मालक दे घर कमी की है, मंग लो, मंगना है नहीं, सेवा सिमरन करना नहीं, फिर किसी नाल ईरखा भी ना करया करो। रहाओ विश्राम दे के महाराज जी कृपा करदे है। महाराज जी कहिंदे इहो संसार सब आवण जाना, मन मूर्ख चेत अजाणा, है मना उपदेश दे रहे हैं सब नूं, यह संसार आउणी जाणी खेड है, विचे असी विचे पदार्थ विचे सब कुछ आ रहा जा रहा, सने सने संसारती ती संसारा। संस्कृत दे कोश व्याख्या लिखी है, जिहड़ा हौली हौली खिसकदा जा रहा वह संसार है, एक स्थिति च कदे नहीं रहिंदा। शरीर भी एक दिन जन्म लैंदा है, बस हौली हौली खिसकदा खिसकदा मौत तक पहुंच जाता है, यही वास्तविकता है संसार की। महाराज कहिंदे मूर्ख मना अणजाण पुणे च ना तुरिया फिर, चेते रख ये शरीर एक दिन खिसकदा खिसकदा तेरे हथों खिसक जाएगा, मुड़ के ना ये कीर्तन मिलना, ना ये साज मिलने ने, ना ये समा मिलना, फिर अगे का सफर अगे वाले जानते हैं भी किधर नू भेजना, किधर नू बंदे ने जाना है। हर जियो कृपा करो गुर मिलो ता हर नाम समाणा। महाराज जी कहते उस तो पहले कि खिसक जाए हथों ये शरीर ये जन्म, अरदास करया करो महाराज कृपा करके अपने चरणा नाल मेल लो सानू। महाराज जी ता कि साडे अंदर भी आप जी का नाम समा जाए, जिथे नाम समा जांदा है उत्थे हम है, उत्थे हंकार कोई विकार नहीं होता फिर मुड़ के।

क्या रस है? आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। रतन लुकाया लुकै नाही, जे को रखै लुकाई। कहिंदे फिर रतन ऐसा जिन्हों मिल जांदा, लुकाउण दी कोशिश भी करे लुका के रख नहीं सकदा। क्यों? मालक अपने प्यारियां नूं बड़ियाई

सब कुछ तेरा ही है, तुसी अंतरजामी हो, तुसी सब दे हो, सब थोड़े ने। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु।

फिर भी ये दात जिन्हों तुसी करदे हो निहाल जिदी पौने हो झोली च ओनू ही मिलती है, हर किसे नू नहीं, हर किसे दे नसीब च ना शहादत हुंदी है ना ब्रह्म ज्ञान हुंदा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। हां जेडे महाराज दिलों हो के महाराज जी दे अगे झोली अड्डियो ही रखते हैं उन्हां ते महाराज जरूर तरस करदे, ऐसी भी गल नहीं है भी वह दंदे नहीं, साडे अंगू ढीठ नहीं। वो कहिंदे तू झोली अड्ड के तां वेख, शायद ही तैनू जिंदगी च कोई चीज इन्नी सुखाली मिली होएगी, उस तो भी सुखाला तैनू सब कुछ दे देंगे। इनिया क बेनतियां प्रवान हुंजा भुल्ला निखीमा महाराज जी मेहरामत करन, सानू मंगण दी जाच बख्श देन, साडा अंदरला

समान जिसकी वत सोई प्रभ जाने जिसनों दे सो पाए वस्त अनूप अत अगम अगोचर गुर पूरा अलख लखाए जिन ए चाखी सोई जाने गूंगे की मिठियाई रतन लुकाया लुकै नाही जे को रखे लुकाई सब किश तेरा तू अंतर जामी तू सबना का प्रभ सोई जिसनु दात करे सो पाए जन नानक अवर न कोई सब किश तेरा तू अंतर जामी तू सबना का प्रभ सोई

त्रास मिटाए। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाए। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाए। सो कहो टल गुरु सेविया अहले सो सहज सुपाय, दर्शन परसें गुरु के

सगले कूड़ कमावे महला पहला जा तू वड्डा सब वड्याइया चंगा चंगा होई जा तू सच्चा ता सब कहो सच्चा कूड़ा कोई ना कोई आखण वेखण बोलण चलण जीवन मरना तात हुकम साज हुकमे विच रखे नानक सच्चाई आप पौड़े सतगुर सेव ने संग भरम चुकाई है सतगुर आखे कार सुकार कमाइए सतगुर होए दयाल ता नाम त्याइए लाह भगत सो सार गुरु पाइए मर्म कूड़ गवार कूड़ कमाइए सच्चे दे दर जाए सच चमाइए सच्चे अंदर मैर सच बुलाइए नानक सच सदा सचार सच समाइए सुरक महला पहला कल का तेरा देखा साई धर्म पंख कर उड़ रहा कूड़ा मावस सच चंद्रमा दिसै नाही कह चढ़िया

मैंने अंदर करी पे काख कराई जेवड़ साहेब तेवड़ दाते दे दे करे रजाई नानक नदर करे जिसे ऊपर सच ना वड़े आई महला दूजा आखने आखना रजिया सुनन ना रजे कान

पोचारे नदिया याग पवन नानका तरी है करमी लाग पौड़ी जीव दया मरमार न पछताइए झूठाए संसार किन समझाइए सच न तरे प्यार धंधे ताइए काल बुरा खै काल सिर दुनियाइए हुक्मे सिर जंदार मारे दाइए आप दे प्यार मन वसाइए हो मोत न चसा विलम भरिए आइए गुर प्रसादी बुज सच समाइए श्रोक महला पहला तुम्मी तुम्मा विश अक ततुरा निम फल मन मुख वसे तिस जिस तू जितना आवे नानक कहिए किस।

तव पौड़ी केते कहे वखान कह कह जामना वेद कहे वख्यान अंतना पावना पड़े नाही भेद बुझे पावना खड़ दर्शन कह पे कह कह सच

दूजा नानक परख आपको ता पारख जान रोग दारू तो वह बुझता वैद सुजान वाटन करी मामला जाने मेहमान मूल जान गल्ला करे हान लाए हान लब न चलई सच रह सुविष्ट पर बाण सर संदया गास को पहुंचे बाण अगे ओ आगम है वाह दड़ जान पौड़ी नारी प्रग प्यार प्रेम सिगारिया करन भगत दिन रात नर निवारिया मेला मंज निवास शब्द सुवारिया सच कह नि अरदास से विचारिया सोन खसम पास हुकम सिधारिया सखी कह नि अरदास मन प्यारिया बिरना मित्रिक वास पिट सो जी व्या सब सुवारिया सो अमृत पी व्यास रोक महला पहला मारू भी ना तृप्तिया अग्गे लय ना भुख राजा राज ना तृप्तिया सायर भरे के सुख नानक सचे नाम की केती पुछा पुछ महला दूजा ने फलंग तस जन्म स जावट ब्रह्मना बिंदते सागरंग संसार स गुरु प्रसाद तरके करण करण समरथ को नानक विचार कारण करते बस दिन कल रखी धार पौड़ी खसम कै दरबार ढाडी वसया सचा खसम कलाण कमल विगसया खसम पूरा पाए मनोरहसया दुश्मन कडे मार सज्जन सरसया सच्चा सतगुरु सेवन सच्चा मार्ग दस्या सच्चा सदविचार काल वि दस्या ढाडी कथ अकथ शब्द सुवारिया नान गुण गह रास हर दियो मिले प्यारिया सुरुख महला पहला खत्यो जमे खते करन ता खत्या विच पाहे धोते मूल न उतरे जिस धोन पाहे नान बख्शे बख्शे नाहे ता पाही पाहे महला पहला नानक बोलन चखना दुख छड़ मंगिए सुख सुख दुख दो दर कपड़े पैरे जाए मनुख जिथे बोलन हारिए तिथे चंगे चुप पौड़ी चारे कुंडा देख अंदर पालिया सचे पुरखा लख सिर जय निहालिया उजड़ भुले रा गुरु वेखा लिया सगुर सचे वा सच संभालिया पाया रतन करा दीवा बालिया

बिलावल जिया जुगत सुमाणी वठे अनक मार कपा सबसे पर्दा हो वे वठे का चरण तुरही सातन दई बलो वे तित के होम जग सद पूजा पया कर जो सो है गुरु संबंध नदी सिख सिखी न तज तुड़ियाई नानक जिसर गुदे नव नाइता सत चट सिर छा सिर छाई महला दूजा महला दूजा के पाला के करे सूरज के ही रात चंदन रा के करे पौन पानी क्या जात धरती चीजी के करे जिस सब कुछ होए नानक ता पत जानिए जा पत रखे सोए पौड़ी तुद सचे सुभान सदा कलाणिया तू सचा दीवान होर आमन जानिया सच दे मंगे दान सत दे आ सच तेरा फरमान

डरिया जे डर होवे होर डर डर डरना मन का सोर राव ना दियो मरे ना डूबे तर जिन किद किया सो किद करे हुक्मे आवे हुक्मे जाए अगे पाछे आगे पाछे हुक्म समाये हंसे तुवासा सुमान तुझे भूख बहुत नैसान भौ खाना पीना आधार विणखा दे मर होए गुवार जिसका कोए कोई कोए कोए सब को तेरा तो सबने का सोए जाके जंत तन माल नानी।

राहु सरम सुरत दोय ससुर पै करणी कामण करम लय सहा संजोग व्या जोग सत्संद कव नानक जोग गौड़ी महला पहला पौने पाणी अग्नि का मेल चंचल चपर बुद्ध का खेल नौ दरवाजे दसवा द्वार बुजुर्ग ज्ञानी विचार कथता भक्ता सुनता सोई आ बिचार सो ज्ञानी होई राहु

नमो आदरया सुमाय कौनान गुरु ब्रह्म दिखाया मरता जाता नजर ना आया गुड़ महला पहला दखनी सुन सुन बुझे मन नाओ ताके सब लिहरे जाओ आप लाए ठोर न ठाओ तुम समझावे मेल मिलाओ ना मिले चला मैं नाल बिनना में बादे सब काल रहाओ खेती वंदना में की ओट पाप पन बीज की पोट काम करो जी में चोट नाम विसार चले मन खोट सच गुर के साची सीख तन मन शीतल साच परीख जल पुराण रस कमल परीख सब रते मिठे रस ईख हुकम संजोगे गढ़ दस द्वार पंच वसै मिल जोतिया पार आप तो लया पे बणजार नानक नाम सुवार नहार गौड़ी महला पहला जात जाय कहत आवे कैब दे कह जाय सुमावे क्यों बात दे क्यों मुक्ति पावे क्यों अविनाशी सह सुमावे नाम हृदय अमृत मुख नाम नर हर नाम नर हर ने काम रहाओ सहज आवे सहज जाय मंत्र उपजय मन माहे समाये गुरमुख मुक्तो बंद न पाए सद विचार छुटाए हर नाये तरव पंखी भाव निस सुख दुखिया मनो मोह विनाश

कहराओ अग्नि पानी बोला पड़वाओ जे वा इंद्रिय कह स्वाओ जित्व करी नाई पाओ पाओ अमर तपाय राओ सन्मर फेर मरना होए।

पाए। मरण लिखाए आए नहीं रहना, हर जप जाप रहन हर सरणा राव सग मृत दुदा भागे कमल बेगास मन हर प्रभ लागे। जीवित मरे मारस आगे सग मिले सत्संजा मैं सोचा गुर की पौड़ी उचो उचा कर मिले जम का पौ मुचा गुर मिले मेरे अंक समाया कर कृपा कर मैल दिखाया नानको में मार मिलाया। गौड़ी महला पहला किरत पया न मिटे कोए क्या जन क्या गय होए जो तुपाणा सोई हुआ अवर न करने वाला दुआ।

विश्व रह नाम समाया। क्या डरिए डर डरे समाना, पूरे गुर के शब्द पछाना। रहो जिस नर राम हृदय रास, सह सवाय मिले साबास। जाहे सवार सांझ ब्याल, इत उत मन मुख बाधे काल। अनस राम हृदय से पूरे, नानक राम मिले भ्रम दूरे। गौड़ी महला पहला, जन्म मराय त्रै गुण हितकार। चारे वेद कथा आकार,

जाने कोए मन शब्द मरे पूजे जन सोए जैसन बख्शे देव डाई गुर प्रसाद हर वसे मन राई रहो गुरमुख करनी कार कुआए ताइस मन की सो जीवाए मन मैं मत मैं कलमक दारा गुर अंकस मार जवालन हरा मन साध साधे जन कोए आचर चरे तांद मल होए गुरमुख मन लया सवार हमें विचो तजे विकार जो तर रखियन में मलाए कदे न विछड़े शब्द वाए अपनी कला पे ही जाने नानक गुरमुख नाम जाने गौड़ी ग्वारे री मला दीजा हमें विच सब जग भराना दूजे पाए परम भलाना भाव चिंता चिंतवे आव नशाना तंता करत्या अंधन बहाना हृदय राम रमो मेरे भाई गुरमुख रसना हर रसन रसाई राहो गुरमुख हृदय जिन राम जाता जग जीवन सेव जुग चारे जाता हमें मार गुर शब्द छाता कृपा करे प्रभ कर्मदाता।

मरण मन माए सुहाए तेरे गुण नेक की मनी बाहे जिसकी वाणी तिस माए सुहाणी तेरी करत कथा गुर शब्द खाणी राहो जय सतगुर तय सतसंगत बनाई जय सतगुर सहज हर गुण गाई जय सतगुर तहा हमेशा जलाई गुरमुख सेवा मैली ता पाए गुरमुख अंतर हर नाम साए गुरमुख भगत हर नाम सुहाए आप दात करे दार पूरे सतगुर स्यों लगे प्यार नानक नाम रते तिन को जयकार गौड़ी गुआरेरी महला तीजा एकस ते सब रूप रंगा पौन पानी बसंतर सब सलंगा भिन भिन वेके हर प्रव रंगा एक चरजी को है सोई गुरमुख विचारे बिरला कोई राहो सहज पवे प्रभ सवनी ताई कहां गोत प्रगट प्रबण बनाई आपे सत्या तेज गाई तिसकी कीमत किने न होई कह कह कतन कहे सब कोई गुर शब्द समाए बुझे सोई सुन सुन वेके शब्द मिलाए वड्डी वडाई गुर सेवा ते पाए नानक नाम रते हर नाम सुहाए गौड़ी गुआरेरी महला तीजा मनमुख सोता माया मोह प्यार गुरमुख जागे गुण ज्ञान विचार सहजन जागे जन ना प्यार सहजे जागे सवे न कोए पूरे गुर ते पूजे जन कोई राहो असंत नाणी कदे न मुझे कथनी करे ते माया नाल लूजे अंध अज्ञानी कदे न सूझे सहजुग में राम नाम ने तारा बिरला को पाए गुर शब्द विचारा आप तरे सगले कुल धारा इस कलयुग में कर्म तरना कोई कली का जन्म चंडाल के घर होई नानक नाम बिना को मुक्त न होई गौड़ी महला तीजा ग्वारेरी सच्चा अमर सच्चा पाशाह मन सचे रते हर वे प्रभाव सच्चे मैल सच नाम संभाल सुन मन मेरे शब्द विचार राम जपो पव जल त्रो बार हो परमे आवे परमे जाए ए जग जन्मिया दूजे पाए मन मुख न जेते आवे जाए आप बुला के प्रभा बुलाया ए जियो विडाणी चाकरी लाया माधो खटे बिरथा जन्म गुआया कृपा करे सतगुरु मिलाए एको नाम चेते विचो परम जगाए नानक नाम जपे नौ नौ निर्दवाए गौड़ी गुआरेरी महला तीजा जन्ना गुरमुखताया तिन पुछ जाए गुरसेवा ते मन बत्याई से धनवंत हर नाम गुआए पूरे गुर ते सोजी पाए हर हर नाम जपो मेरे पाई गुरमुख सेवा हर काल ताए पाई रहाओ आप छाणे मन मोहलोए जीवन भगत हर पावे सोए हर गुण गावे मत उत्तम होए सहजे सहज समावे सोए दूजे पाए ना से व्या जाए होमे माया महा बिख गाए पुत कटम्ब ग्रह मोहया माए मनमुख अंदा आवे जाए हर हर नाम देवे जन सोए अंदन भगत गुर शब्दी होए गुरमत

आदेश तुस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग को वेस एक दू जीबो लख हो हे लख हो वह लख वीस लख लख गेड़ा किए एक नाम जगदीश ए तराहे पत पवड़िया चढ़िया वह इक्कीस सुन गल्ला कासकी कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस आखण जोर जो पै नह जोर जोर न मंगण देन न जोर जोर न जीवन मरण नह जोर जोर न राजमाल मन सोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुट्टै संसार जिस हाथ जोर कर वेख्या सोए नानक उत्तम निज ना कोय राती रुती सती वार पवन पाणी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी।

नरेंद्र केतिया सुरती सेवा केते नानक अंत नांत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तथा नाद विनोद कोड आनंद सर्मकांड की बाणी रूप तथा घाट घड़िया बहुत अनूप तांगियां गलना कथियां ना जाहे जे को कह पिछा पछताए तिथे घड़िया सुरते मत मन बुद्ध तिथे।

नानक उधर कृपा सुख सागर पार ब्रह्म तेरी सरनाहे बंधन काट तरे हर नाहे रहा दूजा गौड़ी महला पंजवा अपने लोभ को कीनो मीत सगल मनोरथ मुक्त पद दीत ऐसा मीत है करो सबको हे जाते व्यर्था कोय न होए रहा अपने स्वाय हृदय तरिया दुख दर्द रोग सगल बधरिया रसना की दी बोलत राम पूर्ण हो गए सगले काम आनक बार नानक बलिहारा सफल दर्शन गोविंद हमारा गौड़ी महला पंजवा कोट बिघन है खन माहे हर हर कथा सा संग सुनाहे पीवत राम राम रस अमृत गुण जास जप हर सरन मिटी गुण दास रहा सर्व कल्याण सुख सहजन दान जाके हृदय बसे भगवान औखद मंत्र तत् सब सार करने हर्ष दे मैं तार तज सब परम भजियो पर ब्रह्म को नानक अटल धर्म गौड़ी महला पंजवा कर कृपा भेटे गुरसोही तत् वल रोग न व्यापे कोही राम रमण तारन है सग पै सागर सरन सूर फाहे जमकागर राम सतगुर मंत्र दियो हर नाम अवसर पूर्ण पै काम जाप तप साजो पूरी बड़ी आही गुर कृपा हर पै सुहाई मान मोख है गुर परम पेख नानक पसरे पार ब्रह्म गौड़ी महला पंजवा विखे राज ते हमला पारी दुख लागे।

पसी हर अमृत पीजे रहम। नैर्मल होद को गोविंद का नाम मंजिल कारत पूर्ण सब काम। सत संग तह गोष्ट होहे कोट जन्म के कल होए। सिमरै साध करे आनंद मन तन रिहा परमानंद। जिसे प्राप्त हर चरण नदान नानक दास तसे कुरबान। गौड़ी महला पंजवा जो कस कर जित मैल न लागे। हर कीर्तन मैं एह मन जागे रहा। एक सिमर न दूजा पाहो सत संग जप केवल नाहो। कर्म धर्म नेम वर्त पूजा पार

जला हर संग राते सो फल फला सब पै मिटे तुम्हारे नाए भेटत संग हर हर गुण गाए रहाओ हर संग राते मिटे सब चिंता हर स्यों सो रचे जिस साध का मंता हर संग राते जम की नहीं त्रास हर संग राते पूर्ण आस

चौथा कर हले एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कर हले मन परदेसिया क्यों मिलिए हर माए, गुर भाग पूरे पाया गल मिलिया प्यारा आए। मन करला सतगुर पुरख त्याय रहाओ, मन कर हला वत निर्मला। मन करहला विचारिया हर राम नाम त्याए, जिथे लेखा मंगी हर आपे लय छिडाए। मन करहला अत निर्मला मल लागी होमे आए, परतख पैर घर नाल प्यारा विछड़ चोटा खाए। मन करहला मेरे प्रीतमा हर हृदय भाल भुलाए, उपाय कितन लभी गुर हिरदे हर दिखाए। मन करहला मेरे प्रीतमा दिन रहण हर लिवलाए, घर जाए पावे रंग मैली गुर मेले हर मिलाए। मन करला तू मीत मेरा पखंड लोपत जाए, पखंड लोभी मारिए जम डांड दे सजाए। मन करला मेरे प्राण तू मैल पखंड भरम गवाए, हर अमृत सार गुर पूरिया मिल संगति मल रह जाए। मन करला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए, एह मोह माया पसम पसरिया अंत साथ न कोई जाए। मन करला मेरे साजना हर खर्च लिया पत पाए, हर दर कै पहनाया हर आप के लिया गल लाए। मन करला हर मनिया, मन करला मेरे साजना हर खर्च लिया पत पाए, हर दर कै पहनाया हर आप लिया गल लाए। मन करला गुर मनिया गुरम घर कमाए, गुर आके कर जोदड़ी जन नानक हर मिलाए। गौड़ी महला चौथा। मन करला विचारिया विचार देख समाल, बन फिर थके बनवासिया फिर गुरमत हृदय निहाल। मन करला गुर गोविंद समाल रहाओ, मन करला विचारिया मनमुख फाथिया महाजाल। गुरमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम समाल। मन करला मेरे प्यारिया सतसंगत सत गुर भाल, सतसंगत लग हर त्याई है हर हर चले तेरे नाल। मन करहला वडभागिया हर एक नदर निहाल, आप छिडाए छुटिया सतगुर चरण समाल। मन करहला मेरे प्यारिया विस जो देही जोत समाल, गुर नौ निध नाम खालिया हर दात करी दयाल। मन करहला तू चंचला चतराई छड विकराल, हर हर नाम समाल तू हर मुक्त करे अंतकाल। मन करहला वडभागिया तू ज्ञान रतन समाल, गुर ज्ञान खड़ग हथ धारिया जम मारियाड़ा जम काल। अंत निधान मन करहले भ्रम भवे बाहर पाल, गुर पुरख पूरा भेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल। रंग रतड़े मन करहले हर रंग सदा समाल, हर रंग कदे न उतरै गुर सेवा शब्द समाल। हम पंखी मन करहले हर तरवर पुरख अकाल, वडभागी गुरमुख पाया जन नानक नाम समाल। राग गौड़ी ग्वारेरी महला पांजवा अष्टपदिया एक ओंकार सत नाम करता पुरख गुर प्रसाद।

जब मन में करत गुमाना तब बावर फिरत बिगाना, जब हुआ सगल की रीना ता तिर मैया घट घट चीना, सह सहेला फल मसकीनी सतगुर अपने मोहे दान दीनी रहाओ, जब किस कोय जान समंदा तब सगले इस मेले फंदा, मीर तीर जब इन्हें चकाई ताते संग नहीं बेराई, जब इन्हें अपनी अपनी धारी तब इसको है मुश्किल भारी, जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही कछताता, जब इन अपने बादो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा, जब इते सा बिन से भरमा भेद नाही है पार ब्रह्मा, जब इन किश कर माने पेदा तब ते दुख डांडे अर खेदा, जब इन एको एक ही बूझिया तब ते असनो सब के सूझिया, जब इह धावे माया अर्थी नै त्रिपतावे नै तिसलाथी, जब इसते होयो जौला पीछे लाग चली उठ कौला, कर कृपा जो सतगुर मिलियो मन मंदिर में दीपक जलियो, जीत हार की सो जी करी तो इस घर की कीमत परी, करन करावन सब किछ एक है आपे बुद्ध विचार विवेक है, दूर ना नेरे सब कै संगा सच सलाहना नानक हर रंगा, गौड़ी मोहल्ला पांजवा घोर सेवा ते नामे लागा, तिसको मिलिया जिस मस्तक भागा, तिसके हिरदे रव्या सोए मन तन शीतल नैचल होए, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे इहां उहां जो काम तेरे रहाओ, जास जपत पोय अपदा जाए तावत मनवा आ बैठाए, जास जपत फिर दुख ना लागे, जास जपत ए हो मैं भागे, जास जपत वस आवे पंचा, जास जपत हृदय अमृत सांचा, जास जपत तृष्णा बुझे, जास जपत हर दर गै सिजे, जास जपत कोट मिटे अपराध, जास जपत हर होवै साध, जास जपत मन शीतल होवै, जास जपत मल सगली खोवै, जास जपत रतन हर मिलै बोर न छोड़े हर संग हिलै, जास जपत कई बकुंठ वास, जास जपत सुख सहज निवास, जास जपत अगन ना पोहत, जास जपत काल ना जोहत, जास जब तेरा निर्मल माथा, जास जब सगला दुख लाथा, जास जबत मुश्किल कछु ना बने, जास जबत सुन अनहद तुने, जास जब ते निर्मल सोए, जास जबत कमल सीधा होए, गौर सब दृढ़ सब ऊपर करी जिसके हृदय मंत्र दे हरी, अखंड कीर्तना तिन भोजन चूरा कहो नानक जिस सत गुर पूरा, कौड़ी मोहल्ला पांजवा गुर का शब्द हृदय अंतर धार, पंच जना सो संग निवार, दस इंद्री कर राखे वास ताके आत्मे होए परगास, ऐसी दृढ़ता ताके होए जाको दया मया प्रभ सोए रहाओ, साजन दौड़ जाके एक समान है, जेता बोलन तेता ज्ञान है, जेता सुनना तेता नाम, जेता पेखन तेता ध्यान, सहजे जागण सहजे सोए, सहजे होता जाए सो होए, सहज बैराग सहजे ही हसना, सहजे चुभ सहजे ही जपना, सहजे भोजन सहजे पाओ, सहजे मिट्यो सगल दुराओ, सहजे होवा साधु सांग, सहज मिल्यो पार ब्रह्म निसांग, सहजे ग्रह में सहज उदासी, सहजे दुबदा तन की नासी, जाके सहज मन भया आनंद ताको पिटिया परमानंद, सहजे अमृत पियो नाम, सहजे कीनो जी को दान, सहज कथा में आत्म रसिया ताके संग अबनासी वसिया, सहजे आसन अस्थिर पाया, सहजे अनहत शब्द बजाया, सहजे रुण चुनकार सुहाया ताके कर पार ब्रह्म समाया, सहजे जाको परियो कर्मा, सहजे गुर भेट्यो सच धर्मा, जाके सहज पया सो जाणै नानक दा ताके कुरबाणी, गौड़ी मोहल्ला पांजवा प्रथमे गर्भ वास ते टरिया, पुत्र कलत्र कुटुंब संग जुरिया, भोजन अनक प्रकार बोह कपरे, सर पर गवन करह गे बपरे, कवन स्थान जो कबहु ना टरै, कवन शब्द जित दौर मत हरा रहाओ, इंद्रपुरी में सार पर मरना, ब्रह्मपुरी निश्चल नहीं रहना, सहपुरी का होएगा काला, त
त्रै गुण माया बिन सिबताला गिर तर तरण गगन अर तारे रावसस पवन पावक नीरारे दिन सरहण बर त्यार पेदा सात सिमरत बिन सेगे बेदा तीर्थ देव देहरा पोथी माला तिलक सोच पाक होती तूती डंडौत प्रसादन पोगा गवन करे गो सगलो लोगा जात वर्ण तुर के अर हिंदू पस पंखी अनक जोन जिंदु सगल पासार दी से पासारा बिन सजाए गो सगल आकारा सहज सिफत भगत तत् ज्ञाना सदानंद नैचल सच थाना तहा संगत साध गुण रस अनपो नगर तहा सद वस तै पो परमा सोग ना चिंता आवन जावन मृत ना होता तै सदा आनंद अनहत आखारे भगत वसे कीर्तन आधारे पार ब्रह्म का अंत ना पार कौन करे ताका विचार कहो नानक जिस कृपा करै निचल थान साध संगत रै गौड़ी महला पांजवा जो इस मार सोई सूरा जो इस मार सोई पूरा जो इस मारे तिसे वड्याई जो इस मारे तिसका दुख जाई ऐसा कोई जे दुबदा मार गवावै इसे मार राज जोग कमावै रहाओ जो इस मारे तिस को भौ नाहे जो इस मारे सो नाम समाहे जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझै जो इस मारे सो दर गै सिजै जो इस मारे सो धनवंता जो इस मारे सो पतवंता जो इस मारे सोई जति जो इस मारे तिस हो वै गति जो इस मारे तिसका आया गनी जो इस मारे सो निश्चल तनी जो इस मारे सो वडभागा जो इस मारे सो अन दिन जागा जो इस मारे सो जीवन मुक्ता जो इस मारे तिसकी निर्मल जोगता जो इस मारे सोई सुगयानी जो इस मारे सो सहज ध्यानी इस मारी बिन थाए ना पर कूट कर्म जाप तप कर इस मारी बिन जन्म ना मिट इस मारी बिन जमते नहीं छुट इस मारी बिन ज्ञान ना होई इस मारी बिन जूठ ना धोई इस मारी बिन सब किश मैला इस मारी बिन सब के जौला जाको पै कृपाल कृपा निद तस पई खलासी होई सगल सहद गौर दुबदा जाकी है मारी कहो नानक सो ब्रह्म बिचारी गौड़ी महला पांजवा हर स्यो जुरे तां सब को मीत हर स्यो जुरे तां निश्चल चीत हर स्यो जुरे ना व्यापे कहड़ा हर स्यो जुरे तां होए निस्तारा रे मन मेरे तू हर स्यो जोरा काज तुहार ना ही होर रहाओ वडे वडे जो दुनियादार काहू काज नाही गावार हर का दास नीच कुल सुनै तिसके संग खिन में उदरै कोट मजन जाके सुन नाम कोट पूजा जाके है ध्यान कोट पुन सुन हर की बाणी कोट फला गुर ते बैद जानी मन अपने में फिर चेत बिन सजाए माया के हेत हर अबनासी तुमरे संग मन मेरे रच राम कै रंग जाके काम उतरे सब भूख जाके काम ना जो है दूत जाके काम तेरा वड गमर जाके काम होवे तू अमर जाके चाकर को नहीं डान जाके चाकर को नहीं बान जाके दफ्तर पुछे ना लेखा ताकि चाकरी करो बसेखा जाके उन नाही काहू बात एक आप अनेक पात जाके दृढ़ हुए सदा निहाल मन मेरे कर तेरा ताकि काल ना को चतर ना ही को मूड़ा ना को हीन ना ही को सूरा जित को लाया तित ही लागा सो सेवक नानक जस भागा गौड़ी महला पांजवा बिन सिमरन जैसे सर प्यार जारी त्यो जीवे साखत नाम बसारी एक निमख जो सिमरन मैं जिया कोट दिन सलाग सदा थिर थिया रहाओ बिन सिमरन त्रह कर्म करास काग बतन बेष्टा मैं वास बिन सिमरन पैकू कर काम साखत बेसवा पूत निनाम बिन सिमरन जैसे सिंह सितारा बोले कूर साखत मुख कारा बिन सिमरन घर तपकी न्यायी साखत थान प्रेट फराई बिन सिमरन कूकर हर काया साखत लोभी बांध ना पाया बिन सिमरन है आत्म कहती साखत नीच तिल को तिस कोल नहीं जाती जिस भया कृपाल ते सतसंग मिलाया कहो नानक गुर जागत तराया गौड़ी महला पांजवा गुर कै बचन मोहे परम गत पाई
गौर पूरे मेरी पैज रखाई गौर कै बचन त्यायो मोहे नाओ गौर प्रसाद मोहे मिलिया थाओ रहाओ गौर कै बचन सुन रसन वखाणी गौर कृपा ते अमृत मेरी बाणी गौर कै बचन मिटिया मेरा आप गौर की दया ते मेरा वड परताप गौर के बचन मिटिया मेरा परम गौर के बचन पेख्यो सब ब्रह्म गौर के बचन की नो राज जोग गौर के संग तरिया सब लोग गौर के बचन मेरे कार्य सद गौर के बचन पाया नौ नद जिन जिन की ने मेरे गौर की आसा तस की कटिए जम की फासा गौर के बचन जागया मेरा कर्म नानक गुर पेटिया पार ब्रह्म गौड़ी महला पांजवा तिस गुर को सिमरो सास सास गुर मेरे प्राण सत गुर मेरी रास रहाओ गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर के चरण तोहे तोहे पीवा गुर की रेण नित मजन करो जन्म जन्म की हो में मल हरो तिस गुर को चलावो पाखा महा अगन ते हाथ दे राखा तिस गुर कह ग्रह ढोवो पानी जिस गुर ते अकल गत जानी तिस गुर कह ग्रह पीसो नीत जिस प्रसाद वैरी सब मीत जिन गुर मोको दीना जियो अपना दासरा आपे मोल लियो आपे लायो अपना प्यार सदा सदा तिस गुर को करी नमस्कार कल कलेश पै भरम दुख लाथा कहो नानक मेरा गौर समराथा गौड़ी महला पांजवा मिल मेरे गोबिंद अपना नाम देहो ना बिना त्रिग त्रिग असनेहो रहाओ ना बिना जो पहरे खाए जो कुकर जूठन मैं पाए ना बिना जेता व्यवहार जो मृतक मिथ्या सिंगार नाम सार करे रस भोग सुख सुपने ने तन मैं रोग नाम त्याग करे अन काज बिन सजाए झूठे सब पाज नाम संग मन प्रीत ना लावै कूड़ कर्म कर तो नरक जावै हर का नाम जिन मन ना अरादा चूर की न्याई जम प्रबादा लाख अडंबर बहुत बिस्थारा नाम बिना झूठे पासारा हर का नाम सोई जन ले कर कृपा नानक जस दे गौड़ी महला पांजवा आद मद जो अंत निबाह सो साजन मेरा मन चाह हर की प्रीत सदा संग चाल दयाल पुरख पूर्ण प्रतपाल रहाओ बिनसत नाही छोड़ ना जाए जय देखा तै रहा समाए सुंदर सुगण चतर जी दाता भाई पूत पिता प्रभ माता जीवन प्राण आधार मेरी रास प्रीत लाई कर दे निवास माया सिल काटी गोपाल कर अपना लीनो नदर निहाल सिमर सिमर काटे सब रोग चरण ध्यान सर्व सुख भोग पूर्ण पुरख नव तन नित बाला हर अंतर बाल संग रखवाला कहो नानक हर हर पद चीन सर्बस नाम भगत को दीन राग गौड़ी माज महला पांजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद खोजत फिरे असंख अंत न पारिया सही होए भगत जिना कर पारिया हो वारिया हर वारिया रहाओ सुन सुन पंथ डराओ बहुत पै हारिया मैं तकी ओढ़ संताल लेहो अबहारिया मोहन लाल अनूप सर्ब साधारिया गुर नेव नेव लागो पाए देहो दिखारिया मैं किए मित्र अनेक एक बलहारिया हा सब गुण कैसी नाए हर पूर भंडारिया चौदस जपिए ना हो सुख सवारिया मैं आही ओढ़ तुहार नानक बलहारिया गुर काढ़ियो पूजा पसार मोक पारिया मैं जीतो जन्म अपार बोर न हारिया मैं पायो सर्ब निदान अकथ कथारिया हर दरगह शोभावंत बाहल उडारिया जन नानक लद्दा रतन अमोल अपारिया गुर सेवा भवजल तरिए कहो पुकारिया गौड़ी महला पांजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नारायण हर रंग रंगो जप जेहवा हर एक मंगो रहाओ तज होमें गुर ज्ञान भजो मिल संगत तुर कर्म लिखियो जो दिसे सो संग न गयो साकत मूढ़ लगे पच मोयो मोहन नाम सदा रव रहो कोट मधे किन गुरमुख लहयो हर संतन कर नमो नमो नौ निद पावे तुल सुखो नैन अलोवो साध जनो हिरदे गावो नाम निदो
काम क्रोध लोह मोह तजो जन मरण दोथे रहियो दुख अंधेरा करते मिट्यो गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बल्यो जिन सेविया सो पार परियो जन नानक गुरमुख जगत तरियो महला पांजवा गौड़ी हर हर गुर गुर करत भरम गै मेरे मन सब सुख पायो रहाओ जल तो बल तो जल तो तौकिया गुर चंदन सीत लायो अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर ज्ञान दिपायो पावक सागर गहरो चर संतर नाव तरायो ना हम करम न धर्म सच प्रभ गै पूजा अपायो भोखंडन दुख भंजनो भगत वचल हर नायो अनाथ अनाथ कृपाल दीन समरथ संत उठायो निर्गुण यारे की बेनती देहो दर्श हर रायो नानक सरन तुहारी ठाकर सेवक द्वार आयो गौड़ी मोहला पांजवा रंग संग बिख्या के भोगा इन संग आंद न जानी हो संचो हो खाड़ता सगली अवध बिहानी रहाओ हो सूरा प्रधान हो को नाही मुझे समानी जोबनवंत उचार कलीना जोबनवंत अचार कलीना मन में हुए गुमानी जो अलझायो बाद बुध का मरत्या नहीं बिसरानी पाई मीत बंधव सके पाछे तिन्हू को संपानी जत लागो मन बासना अंत साई प्रगटानी अहमद सोच कर्म कारे बंधन बंधानी दयाल पुर कृपा करो नानक दास दसानी जुमला एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद राग गौड़ी पूर्वी शांत मोहल्ला पहला मोंद रहन दे लड़िया जियो नींद ना आवै सा तन दुबलिया जियो पैर कह हावै तन थी दुबल कंत हावै केव नैनी देख सिंगार मेठरस भोग भोजन सब झूठ किते ना लेखे मैं मत जो बन गर्भ गाली दुधा थनी ना आवे नानक सातन मिले मलाई बिन पर नींद न आवे मुंद न मानणिया जियो बिन तनी प्यारे क्यों सुख पावेगी बिन और तारे नाह बिन कर वास नाही पुछो सखी सहेलियां बिन नाम प्रीत प्यार नाही वसे साच सहेलियां साच मन सजन संतोख मेला गुरमती सौ जानिया नानक नाम न छोड़े सात हन नाम सहज समाणिया मिल सखी सहेलड़ी हो हम पिर रावेहा गुर पुछ लिखोगी जियो शब्द स्नेहा शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछताणिया निक्स जातो रहे अस्थर जाम सच पछाणिया साच कीमत सदा नौतना शब्द नेहो निवेलियो नानक नदरी सहज साचा मिलो सा सखी सहेलियो मेरी एच पुन्नी जियो हम घर साजन आया मिलवर नारी मंगल गाया गुण गाए मंगल प्रेम रैसी मुंद मन अमाहियो साजन हंसे दुष्ट व्यापे साच जप सच लाहियो कर जोड़ सा तन करे बिनती रैन देन रस भिनिया नानक पैर तन करे रलिया एच मेरी पुनिया गौड़ी शांत मोहल्ला पहला सुन नाह प्रभु जियो ए कलड़ी बन माहे क्यों धीरेगी ना बिना प्रभ वे परवाहे तन नाह बाजो रह न साकै बिखम रहन कनेरिया ने नींद आवे प्रेम भावै सुन बिनंती मेरिया बाजो प्यारे कोय न सारे ए कलड़ी कुर लाए नानक सातन मिले मिलाई बिन प्रीतम दुख पाए पिर छोडड़ी जियो कवन मलावै रस प्रेम मिली जियो शब्द सहावै शब्द सहावे ता पत पावै दीपक दे उजारै सुन सखी सहेली सच सहेली साचे के गुण सारै सतगुर मिली ता पिर रावी बिगसी अमृत बाणी नानक सातन ता पिर रावै जा तिस कै मन पाणी माया मोही निघरिया जियो कूड़ मुठी कुड़ियारे क्यों खुले गल जीवड़िया जियो बिन गुर अत प्यारे हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे तिस ही का सो होवै पुन दान अनेक नावण क्यों अंतर मल धोवै ना बिना गत कोय ना पावै हठ नै ग्रह बेबाणै नानक सच कर शब्द संजापै दवदा महल के जाणै तेरा नाम सच्चा जियो शब्द सच्चा विचारो तेरा महल सच्चा जियो नाम सच्चा वापारो नाम का वपार मीठा
भगत लाहा अन्न दिनो तिस बाज वखर कोई न सूझे।